ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਸਾਰ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ।

चढ़े तुरंग खालसा सोए जो करे नित जंग। खालसा सोए शस्त्र

पोत सागर दुंदेरो सेव करी इन्हीं की पावत आन की सेव सुहात ना जी को आगे फले इन्हीं को दियो जग में जस और दियो सब फीको सेव करी इन्हीं की पावत

आगे फल इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सल्पी को, मोग्रह में मन ते तन ते सिर लाओ।

Right?

Perfect.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह धन अखुट नान खुटै ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को साध बल जाई गुर कृपा ते हर मन बसाई एह धन अखुट नान खुटै ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को साध बल जाई गुर कृपा ते हर मन बसाई से धनवंत हर नाम लिव लाए गुर पूरे हर धन पर गासिया हर कृपा ते बसे मन आए से धनवंत हर नाम लिव लाए गुर पूरे हर धन पर गासिया हर कृपा ते बसे मन आए रहाओ अब गुण काट।

सुख मन अंतर सहज सुमानी एक अचरज जन देखो भाई दुबदा मार हर मन बसाई नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद।

0: सब सब मैं बसे प्रभ एको सोए गुरमति घट प्रगट होए सहजे जन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिले मन मान्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनासरी महला तीजा घर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहो धन अखुट नान खुटै ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन बसाई से धनवंत हर नाम लिव लाए गुर पूरे हर धन परगासिया हर कृपा ते बसे मन आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लख वार ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਤ੍ਰੀਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ
1: ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ
2: ਹੁਕਮੀ
1: ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ
2: ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ
1: ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ
2: ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ

0: सगल
1: चोटा ना खाए मन जम कर साथ ना जाए।
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।
1: मार्ग ठाक न पाए मन पथ सु प्रगट जाए।
0: मन मग न चले पंथ मने धर्म सेती।

0: विचार करते का कर्ण नाही सुमार
1: सचार
0: तब लर किता पार
1: होर परे होर होर तिस्ते पार करे कवन जोर
0: जात रंगा के नाव सबना।

0: तिसवे धरती थाप रखी धर्म साल तिसवे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेको अनंत
1: कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
0: सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवे निशान
1: कच पकाई ओथे पाए नानक गया जपे जाए
0: धर्म खंड गए धर्म ज्ञान खंड काखो कर्म
1: केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश
0: केते वर में

0: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्री मुख भाग पातशाह दसवीं छपा संतो प्रसाद चक्र चिन्ह बरन जात रपात नहिं जे
1: रूप रंग रेख पे को कह न सकत कहे
0: दान पो प्रकाश में तोज के हिजय
1: कोट इंद्र इंद्रान शाहु शाहन गणिजे
0: पवनीव सौर नार सौर नित नित बंतरण कहत
1: तब सर्व नाम कथे कवन करम नाम बरनत समत पचंग पयात छंद
0: मस्त अंकाल नमस्त अंगर पाल नमस्त रूपे नमस्त अनूपे
1: नमस्तंग पेखे नमस्तंग लिखे नमस्तंग काय
0: नमस्तंग जाए नमस्तंग नमस्तंग भंजी नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे
1: नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग धामंग
0: नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ठाहे
1: नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे
0: नमस्तंग गंजी नमस्तंग भंजी नमस्तंग धारी नमस्तंग पारी
1: नमस्तंग सोए के नमस्तंग नेके नमस्तंग पूते नमस्तंग जुपे
0: नमस्तंग नरकर्मी नमस्तंग नरपर नमस्तंग निर्देशी नमस्तंग निर्पेशी
1: नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्दाते नमस्तंग निर्गाते
0: नमस्तंग निर्तूते नमस्तंग पूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके
1: नमस्तंग निर्थापे नमस्तंग थापे नमस्तंग तिरमाने नमस्तंग निदाने
0: गाय नमस्तंग बाय नमस्तंग तरभर्गे नमस्तंग सर्गे
1: नमस्तंग परपोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे
0: नमस्तंग गामे नमस्त अस्त्रमे नमस्तंग जलाश्री नमस्तंग निराश्री
1: नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मजवे नमस्तस्त अजवे
0: देशी नमस्तंग पेशी नमस्तंग नरतामे नमस्तंग नरबामे
1: नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूप

Vai, Gru, vai, Gru, vai, Gru, vai, Gru, vai, Gru, vai.

आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी अनहद बजया गुर

शीतला तावे, खर बाहन ओठार गावे। शिव शिव करते

ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਵੇ ਗਏ ਹੈ ਹੋਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਲਹੂ।

பட்டி பிரேம பகத்து மண்ணு நீ நெத் பாஜே.

बिना तेग के संग देवो ना देदारे के संग धूप दे सुच पावन है ए गुरु की मोहर सुहावन। पहले जब सृष्टि उपाई तब ही मानुख देह बनाई तन इसके सिर केस जो दिनो सो एह तन श्रृंगार है कीनो दाड़ा मूछ सिर केस बना।

बेशिया बिखिया जुआ तजे मछली मांस ना कबहू भजे गुर का

अलख सुखाया जैसे विखे हित पर नारी।

सब सुहागन माने लिया एक देवरा मैं अवगण भरपूर शरीरे हम क्यों कर मिला।

0: यार वे प्रिया वे सखिया मुँह कही ना दे गया
1: यार वे एक डू एक चाड़े हाँ किस चेते ही आ
0: एक डू एक चाड़े अनेक प्यारे नित कर दे।

नाम रस रात अंतर साच अंतर सा

मन रे क्यों छूटे, क्यों

मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत होए ता पाईए गुरमत होए ता पाईए जे सच मिले।

खेल गए से पंखनु जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन आज के कल जिस तू मिले सो मिले।

जाए सच्चा पेड़ मल, बिन गुर प्रीत ना उपजे, बिन गुर प्रीत ना उपजे, हमें मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तोए, बिन

सोहंग ताप पछाणी है शब्द भेद पति आए गुरमुख।

कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो जलो ऐसी री जलो।

जिस प्यारे सोने हो तिस आके मर चली है।

जे सतगुर सच पावे, जे सतगुर सच पावे, आपे दया करो प्रभु दाते, नानक अंक समावे। जिस प्यारे स्याने हो तिसे आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना हमारे। एहे कृपा कीजे हमारे।

दर्शन कैसे रोस नहीं हां दोहागन खरीरन जानी सब कंत है रतिया मैं दोहागन केत मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर मित्र

मैं छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया। रंग कसुंभ पुली तो सजन की मैं की मन पादी हों तुद बिन अड न लह दे। नानक जी नानक